नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः।

नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः।

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य।

वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य जपिए वाहे गुरु जी बोलो।

हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि हरि हरि बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो हरि नित्य नित्य